0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातःकाल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
3: जी
2: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
3: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक

0: बुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम।

0: लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निसंदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर

0: पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
1: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
2: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
3: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
4: धन्यवाद श्रीमान।
3: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
4: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
3: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
4: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
3: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
2: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।
3: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
2: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
5: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
6: जी, हम तैयार हैं।
5: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
7: वो क्या साहब?
5: इस मैप को देखिए। सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
7: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
5: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा।

0: संदेश मिलने का इंतजार करना।
1: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
3: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
2: आक्रमण हुआ
3: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली, आयो महाकाली।
3: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
2: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
0: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
3: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
2: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
3: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
2: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिक

0: लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नु, ना छोड़।

0: इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गई।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: यार साचू कहू ने, हजी तो उनाळा नी शुरुआत थई छे ने त्यां 7-7 हजार ना लाइट बिल आवा मांड्या छे। वाइफ तो क्यारनी कहती थी के सोलर पैनल नंखावी दो, सरकार सबसिडी पण आपे छे। मैं जेमने पण पूछ्यू ने, बधाना लाइट बिल हवे तो जीरो आवे छे, एटले आ वखते तो सोलर पैनल नंखावी ज देवी छे। ज्यारे वीजळी मफत मळती होय तो शुं काम जती करवी? तमे पण मोडू ना करो, नंखावी ज दो। PM सूर्य घर मफत वीजळी योजना जोड़ावा माटे रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: તમે સાંભળી રહ્યા છો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર। હું પ્રિયરાજ સૌ બાળ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું બાળ સભામાં।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ. वेलकम बैक. आज के इस रेट्रो बॉलीवुड शो में मैं बातें कर रही हूं 90s के कुछ ऐसी दीवाज के बारे में जिनके बिना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती थी. 90s में एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और अपनी यूनिब्राउ पॉपुलर कर ली थी इन्होंने, जो अपने चेयरफुल आउटस्पोकन हैप्पी गो लकी नेचर के लिए जानी जाती थी. ऑफकोर्स आप पहचान ही गए हैं, मैं बात कर रही हूं काजोल की. काजोल की फिल्मी दुनिया में एंट्री 1992 की बेखुदी फिल्म के साथ हुई थी, लेकिन उन्हें पहली कमर्शियल सक्सेस बाजीगर से मिली जब उन्हें पहली बार शाहरुख के साथ ऑन स्क्रीन पेयर किया गया था. और फिर क्या होना था, काजोल ने जब भी शाहरुख खान के साथ में फिल्में की हैं वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं. वैसे काजोल के लिए सबसे टफ किरदार गुप्त फिल्म का था, क्योंकि उन्हें एक मीन ग्रे शेड का जो कैरेक्टर था वो प्ले करना था. लेकिन इसी रोल के कारण शी बिकेम द फर्स्ट वुमन एवर टू विन अ फिल्म फेयर फॉर अ नेगेटिव रोल. जहां दूसरी एक्ट्रेसेस के लिंकअप की खबरें सामने आती रहती थी, वहीं काजोल इन सबसे काफी दूर थी. कॉन्ट्रोवर्सीज इन्हें छू भी नहीं पाती थी. इनफैक्ट गुंडा राज फिल्म की शूटिंग के दौरान शी स्टार्टेड डेटिंग अजय देवगन और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई थी. उनकी शादी भी अजय देवगन से ही हुई विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सीज. लोगों ने जरूर इनके अनलाइकली पेयरिंग को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म जो था वो इन्हें दिया था, लेकिन इनके प्यार को किसी की परवाह नहीं थी. वैसे काजोल का लकी नंबर 5 है, इसीलिए 1995 में उनकी 5 फिल्म्स रिलीज हुई थी और सभी ब्लॉकबस्टर चाहे ना रही हो, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आज तक भी हम याद करते हैं. तो इसी फिल्म से आपको अगला गाना सुनाती हूँ लता मंगेशकर जी की आवाज में. हर लड़की ने अपने टीनेज में कभी ना कभी तो इस गाने पे डांस किया ही है. मैं हूँ रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस के बारे में, या यूं कहें कि डीवाज के बारे में आज यहां पर मैं और आप मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। और जब हम डीवाज की बात करें तो श्रीदेवी जी का नाम सामने ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। श्रीदेवी जी को दिल से याद करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला की भी अगर कोई इंस्पिरेशन थी बॉलीवुड में तो वो श्रीदेवी जी ही थी। श्रीदेवी जी ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख, सलमान तक ऑलमोस्ट सभी टॉप स्टार्स के साथ काम किया था। फिल्मों के साथ फैशन में भी वो काफी पॉपुलर थी। उनका आइकॉनिक चांदनी लुक मतलब फैशन का सीन ही चेंज कर गया था इंडिया में। सुना है डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने चांदनी के लिए पहले रेखा जी को ऑफर भेजा था, लेकिन सिलसिला फिल्म में उन्होंने चांदनी नाम का कैरेक्टर पहले ही कर लिया था तो उन्होंने मना कर दिया और खुद श्रीदेवी को उन्होंने ही रेकमेंड किया था इस रोल के लिए। और बताइए, ये जो एक कैरेक्टर था ये श्रीदेवी जी के लिए जैसे एक बेंचमार्क बन गया था। एक बार यश जी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे और रास्तों पर सिर्फ एक्शन फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे। इट वॉज देन जब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बदलाव लेकर के आना है और अब थोड़ा सा रोमांटिक फिल्में भी, रोमांटिक कहानियां भी लोगों को सुनानी है, दिखानी है। एंड दैट इज वेन उनके दिमाग में चांदनी फिल्म का ख्याल आया था। इस फिल्म की इतनी बात हो रही है तो चलिए इसी फिल्म का गाना आपको सुनाऊंगी, श्रीदेवी जी का गाना। ऑफकोर्स 90s की वन ऑफ द बिगेस्ट डीवाज। लेकिन उसके पहले लम्हे फिल्म से हरिहरन और लता दीदी की आवाज में अगला गाना कभी मैं कहूं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो जारी है। मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डीवाज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। श्रीदेवी जी के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं के दो गाने अभी आपने सुने। और अब मैं 90s में सबसे क्विक सक्सेस जिन्हें मिली उनके बारे में बात करूंगी। नाम है इनका जूही चावला। जूही ने 1984 में मिस इंडिया का क्राउन जीता था। वैसे आप जानते हैं जूही भी कथक में ट्रेन थी और वो भी 3 साल तक की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ऑल्सो क्लासिकली ट्रेन सिंगर भी रही है ये। लेकिन जूही इन सब के कारण नहीं बल्कि अपने कॉमिक रोल्स और चीयरफुल पर्सोना के लिए बहुत पॉपुलर थी। लेकिन फिर भी एक बार इनके और आमिर खान के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि इश्क फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने जूही चावला पर एक खतरनाक प्रैंक, एक बहुत ही बुरा मजाक किया था। जूही को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और वो नाराज हो गई थी और अगले दिन शूट पर ही नहीं आई, जिसके कारण उस दिन बहुत सारा लॉस हुआ था प्रोडक्शन टीम को। और आमिर खान काफी नाराज भी हो गए थे कि मैंने तो मजाक किया था, इसके ऊपर जूही इतना क्यों बुरा मान गई। कुछ दिन के बाद में इन दोनों के बीच में लेकिन ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी एंड ऑब्वियसली शूटिंग फिर से शुरू हुई। दैट्स हाउ हम ये फिल्म जो है इन दोनों के बीच की वो देख भी पाए थे, इश्क, वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ दैट टाइम। वैसे जूही की आमिर और शाहरुख दोनों के ही साथ में पेयरिंग काफी पॉपुलर थी, जिसके लिए उन्हें काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। लेकिन शाहरुख खान के साथ जब ये डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग कर रही थी प्राग में, उस समय शूटिंग के दौरान जूही चावला ने अपनी माँ को खो दिया था और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा था। काफी हैवी लॉसेस हुए थे इस फिल्म के प्रोडक्शन टीम को क्योंकि शूटिंग रोक दी गई थी। और सबसे ज्यादा अगर किसी पर इस चीज का फर्क पड़ा था तो वो शाहरुख खान थे, क्योंकि शाहरुख ने खुद कह दिया था कि जो भी लॉसेस हैं वो मेरी फीस में से काट दो लेकिन इस फिल्म को जारी रखो। आई थिंक दैट इज वाई ही इज द किंग ऑफ बॉलीवुड। बट एनीवे, जूही चावला की बात हो ही रही है, 90s की एक बहुत ही बेहतरीन डीवा, तो जूही चावला और शाहरुख खान की ही फिल्म डर से सुपरहिट गाना आपको सुनाती हूँ, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। मैं रुचि आपके साथ।

90s की मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस डांस में अव्वल थी। अगर माधुरी और जूही कथक ट्रेन डांसर्स थे तो मनीषा कोइराला भरतनाट्यम और मणिपुरी ट्रेन डांसर। मनीषा अपनी टाइमलेस क्लासिक ब्यूटी और एलिगेंस के लिए पॉपुलर थी। एक्टिंग के पहले उन्हें डॉक्टर बनने की चाहत थी, लेकिन बहुत सारी मॉडलिंग जॉब्स ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। मनीषा ने बॉलीवुड के साथ साथ नेपाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था 1991 की फिल्म सौदागर के साथ में, और वो उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। वैसे शादी से पहले मनीषा वॉज क्वाइट पॉपुलर फॉर हर टर्बुलेंट अफेयर्स। इनफैक्ट अपने सौदागर फिल्म के को स्टार विवेक मुश्रान के साथ अफेयर की खबरें भी इनके सामने आई थी, लेकिन बाद में इन दोनों का ये जो अफेयर था ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। लेकिन क्या आपको पता है, मनीषा कोइराला अपने जमाने की सबसे ज्यादा कमिटमेंट फोबिक एक्ट्रेस मानी जाती हैं। बहुत डर लगता था इन्हें रिलेशनशिप्स में घुसने से, चाहे ये अपनी रियल लाइफ में ऐसी थी, लेकिन फिल्मों में तो इन्होंने काफी रोमांटिक रोल्स भी निभाए हैं। फिलहाल मैं आपको मनीषा कोइराला की उस फिल्म से गाना सुनाती हूँ जिसे वो ऑलमोस्ट खो चुकी थी। मैं बात कर रही हूँ 1942 लव स्टोरी की। इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में मनीषा फेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा जी से काफी रिक्वेस्ट करके दूसरा स्क्रीन टेस्ट करवाया था और तब जाकर वो सिलेक्ट हुई थी। आई मीन आई कैन नॉट इवन इमेजिन दिस फिल्म विदाउट मनीषा कोइराला। चलिए कुमार सानू की आवाज में ये गाना, सेलिब्रेटिंग 90s की डीवा मनीषा कोइराला, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डिवास के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, और जब 90s की कुछ खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बात हो, डिवास की बात हो और ऐश्वर्या राय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। हम दिल दे चुके, सनम, गुरु, देवदास जैसी फिल्मों से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, इस चीज का भी एक एग्जाम्पल उन्होंने सभी एक्ट्रेसेस, नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस एक्चुअली, सभी लड़कियों के लिए सेट किया है। लेकिन क्या आप ऐश्वर्या की एजलेस ब्यूटी का राज जानते हैं? चाहे वो कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडोर्स

क्यों ना करती हूँ, लेकिन ऐश्वर्या राय आज तक भी सिर्फ आयुर्वेदिक ऑयल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने चेहरे पर। वैसे ऐश्वर्या खुद भी एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी। उनका बचपन से सपना था कि या तो वो डॉक्टर बने या फिर एक आर्किटेक्ट बने। बताओ बचपन में हम क्या क्या सपने देखते हैं और बड़े होकर के क्या बन जाते हैं। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सोचिए अगर ऐश्वर्या राय डॉक्टर बनती और आप ऐश्वर्या राय के पास में जाते पेशेंट बन करके, तो आप तो अपना दिल दे करके आ जाते वहां पर, तो अलग दिल के मरीज बन जाते आप, चाहे कोई और बीमारी लेकर के गए होते। एनीवे ऐश्वर्या राय की बात यहाँ पर हो रही है, तो और प्यार हो गया फिल्म से उदित नारायण जी का गाना सुनाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये गाना लेकर के आई हूँ। मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से है ये गाना। सुनिएगा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: करने का भी है।
1: मैं मोदी जी नी वात मानी ने सोलर पैनल नखावी हने खरेखर मारू लाइट बिल जीरो थई गयू। तमे पण आजे ज नखावी लो तो पछी राश एनी जुओ छो। आजे ज रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हेलो हाय नमस्कार, गानों की इस महफिल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जो भी गाने सुनेंगे वो कुमार शानू जी ने गाए हुए हैं। आपको तो पता ही है कि कुमार शानू जी हिंदी सिनेमा के एक जाने माने गायक हैं। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका नाम दरअसल कुमार शानू जी नहीं है बल्कि उनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। उनके पिताजी भी स्वयं एक अच्छे गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही कुमार शानू जी को गायकी और तबला वादन सिखाया था। आपको पता है कि उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है इस गाने की वजह से, और वो गाना है सोचेंगे तुम्हें प्यार। ये गाना दीवाना फिल्म से है जिसका संगीत निर्देशक नदीम श्रवण ने किया है। तो अगर इस गाने की बात ही हो रही है तो चलो इस गाने को सुन भी लेते हैं, सोचेंगे तुम्हें प्यार।

कुमार शानू जी गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। शानू जी ने गायकी में अपना खुद का एक अलग अंदाज बनाए रखा हुआ है, इसीलिए आज भी उनके चाहने वाले उनके गानों को सुनकर अपना दिल थाम लेते हैं। उनको पहला ब्रेक जगजीत सिंह ने दिया था, उन्होंने ही शानू जी को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया था। 1989 में आई फिल्म जादूगर के लिए कुमार शानू ने एक गीत भी गाया था। क्या आपको पता है कि एक दिन में 28 यानी कि 28 गाने रिकॉर्ड करवाने वाले वह एकमात्र गायक है? हाँ, ऐसा शायद कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने 20,000 गाने गाए हैं। कुमार शानू का आज के दौर में संगीत के बारे में कहना है कि आज के संगीत से मेलोडी, सुर, ताल आदि कहीं गुम हो जा रहा है और उसकी जगह शोर ले रहा है। और अगर जहाँ पे मेलोडी गानों की बातें हो रही है, वहाँ पे ये गाना सुनना तो बनता है। ये गाना है साजन फिल्म का, मेरा दिल भी कितना पागल है। आई नो मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं, पर शानू जी तो बेहद ही अच्छे सिंगर है। तो चलो ये गाना सुन लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस गाने के लिए भी उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। चलो सुनते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है।

कुमार शानू जी मानते हैं कि आज के संगीत में मेलोडी सुरताल कहीं गुम हो रहे हैं और उसकी जगह शोर ले रहा है। यदि यही वजह है कि आज के अधिकतर गीत यादगार प्रतीत नहीं होते, उनकी चाहत हमेशा रही कि काश उन्होंने सचिन देव बर्मन के साथ कोई गाना गाया होता। बहुत समय से वह बंगाली फिल्मों में सक्रिय है और हिंदी फिल्मों में कम। 2009 में उनके अभूतपूर्व संगीत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था।

देश के चौथे सबसे सम्मानित नागरिक के तौर पर मनोनीत भी हुए। फिल्म राउडी राठौर में गीत चमक छल्लो छल छबीली के साथ दोबारा वापसी की। फिर सन 2014 में रिलीज यशराज फिल्म निर्मित दम लगा के हैशा फिल्म में गीत दर्द करारा गाया। और जैसे कि आपको पता है, ये फिल्म का ये सॉन्ग बेहद ही मस्त, जैसा लगता नहीं कि पुराने गाने और पुराना माहौल जैसे फिर से जिंदा हो गया। तो ये गाना तो सुनना बनता है नहीं, तो चलो सुन लेते हैं दम लगा के हैशा फिल्म से दर्द करारा सॉन्ग, जिसको गाया है कुमार शानू जी ने।

कुमार शानू को अधिकतर 1919 के दशक की फिल्मों में दिए गए पार्श्व गायन के लिए जाना जाता है। इसमें फिल्म जुर्म कैसे भूल सकते हैं, जिसका गाना आज भी कोई भी मैरिज पार्टी हो, मैरिज फंक्शन हो या तो प्राइवेट वैलेंटाइन पार्टी हो, इसमें जरूर बजाया जाता है। कुछ ऐसे गाने नहीं होते जो भले ही पुराने हो जाए लेकिन दिल के बेहद ही करीब रहते हैं। उनका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा ही एक गाना है जुर्म फिल्म से, जब कोई बात बिगड़ जाए। ये गाना जब आया था तब से लेकर अब तक की जनरेशन को बेहद ही पसंदीदा है। आप ये गाना हर बार सुनते होंगे। जब ये गाना बजता है तो दिल में कुछ कुछ जरूर होता है। तो चलो हम आगे यही सॉन्ग आपको सुना देते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। इस सॉन्ग के बाद हम वापस से यही मिलेंगे। रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि।

आगे आपने ये सॉन्ग सुना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग से अगर तुम अपने दिल की बात शेयर किसी से ना कर सको तो सिर्फ ये सॉन्ग बजा देना। आई नो कि सामने वाला इंसान आपकी बात जरूर समझ जाएगा। जब कोई बात बिगड़ जाए सॉन्ग से उनको बहुत सारी सफलता मिली, लेकिन उनको सुपरस्टार बना दिया आशिकी फिल्म के गानों ने। इस फिल्म से उन्होंने शुरुआत कर लगातार 5 सालों तक 1991 से लेकर 1995 तक

इसी गाने से जाहिर करते होंगे, क्योंकि इस मूवी में इतने सारे गाने हैं और सारे के सारे आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड ज़रूर होंगे। तो चलो आज हम ये गाना सुन लेते हैं, अब तेरे बिन, और इसके बाद वापस से मिलेंगे रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि के साथ।

श्रवण है जिनके साथ उनकी सफलता की शुरुआत हुई और उन्हें सर्वाधिक कामयाबी प्राप्त हुई। हाँ, मैंने आपको जो भी सॉन्ग अभी सुनाए, अब तेरे बिन सोचेंगे तुम्हें प्यार, मेरा दिल भी कितना पागल है, इस तीनों सॉन्ग में संगीत निर्देशक किया है नदीम श्रवण जी ने। क्या आपको ये पता है कि 2000 में आई हुई हम दिल दे चुके सनम मूवी में गाए हुए एक सॉन्ग की वजह से उनको अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार मिला था, और इस मूवी का वो सॉन्ग था आंखों की गुस्ताखिया। हाँ, वही गुस्ताखिया जहाँ पे सलमान खान और ऐश्वर्या राय आंखों से बड़ी ही गुस्ताखिया कर रहे हैं। अगर इस गाने की बात हो रही है तो आई नो कि आपको ये गाना सुनने का बहुत ही दिल हो रहा होगा। कोई नहीं, रेडियो पे आपके लिए ये सॉन्ग जरूर बजेगा। इस सॉन्ग के बाद हम फिर से मिलेंगे ओनली ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि।

वैसे तो कुमार शानू जी ने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं, जैसे कि आनंद मिलिंद, जतिन ललित और अनु मलिक। लेकिन वो नदीम

कुमार शानू जी ने वैसे तो अपने संगीत करियर में बहुत सारे गाने गाए, सोनी म्यूजिक के लिए, टी सीरीज के लिए, टिप्स और सारे गामा के लिए। लेकिन आपने ये गाना जरूर सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वापस से मैं कह देती हूँ कि आई नो कि मैं सुर की इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर ये गाना कभी भी बजता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और दौर में पहुंच गए हैं, लाइक सपनों की दुनिया में कहीं खो गए हैं। 1942 में लव स्टोरी मूवी आई थी और इस मूवी में संगीत निर्देशक किया था आर.डी. बर्मन जी ने, हाँ, और जिसमें ये सॉन्ग लिखा था जावेद अख्तर जी ने, इसको गाया था कुमार शानू जी ने। जब भी ये गाना बजता है ना तो आज भी यंग जनरेशन एकदम झूम जाती है, हर कभी भी अगर उनको प्यार होता है ना तो ये गाना जरूर सुनते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और इस गाने को सुनने के बाद यार पता नहीं कि कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ इस गाने के बारे में, तो आई नो कि आपको भी ये गाना सुनना होगा, तो चलो सुन ही लेते हैं ये गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

अब मेरा जाने का समय हो चुका है। हाँ, समय तो हो चुका है और आज तो कुंवर शानू जी के सॉन्ग सुनकर मेरा दिल झूम रहा है। दिल धड़कन धड़कन पता है ना, धड़कन एकदम जोरों से धड़कने लगी है। अगर धड़कन की बात हो रही है तो फिल्म धड़कन का ये सॉन्ग तो आपने सुना होगा ना। तुम दिल के धड़कन में, हाँ हाँ हाँ यही सॉन्ग। ये सॉन्ग भी गाया है कुमार शानू जी ने। अब मैं जा ही रही हूँ तो आपको ये सॉन्ग तो मैं जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि फिल्म धड़कन से अगर ये सॉन्ग नहीं सुना कुमार शानू जी का तो क्या ही सुना। चलो इस सॉन्ग को सुन लो। नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट वीक मैं आपसे जरूर मिलूंगी, ओनली ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM पर। चलो मस्त रहना, व्यस्त रहना और सुनते रहना रेडियो पालमपुर।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों परेशान हो, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। मैं हूं आपकी आरजी रुचा। मस्त रहे, व्यस्त रहे, सुनते रहे रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

आप जियो हजारों साल और हर पल में आपको मिले खुशियाँ ढेर सारी। दोस्ती को जिसने नाम दिया सच्चा, जहाँ मुझे एक लगाव मिला सच्चा। कुछ भी न मैंने तुमसे मांगा, न तुमने मुझसे, फिर भी एक वादा मिला सच्चा। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं जो आपसे हो। हमें अपनी जिंदगी में एक छोटी सी जगह दे दिया और हमारे दिल में आपने ले। दोस्त आप चाहे हमें याद रखे न रखे, पर आपकी यादें हमें हर पल आती रहती है। आप ही तो है जिनसे हम कुछ भी कर सकते थे। आप ही तो है जिनसे हमारा दिल जुड़ा हुआ है। ऐसी दोस्ती को सलाम करते हैं। कभी भी किसी भी वक्त याद कीजिएगा, आपका दोस्त आपके लिए हर वक्त हाजिर हो जाएगा। आप हमें चाहे भूल जाए, हम आपको न भूल पाएंगे, क्योंकि आप हमारे दिल में जो बसते हैं। विश यू अ हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। दोस्त तुम जियो हजारों साल।

हाय नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी किताब लेकर आई हूँ। हमने कई आत्मकथाएं पढ़ी हैं, कई आत्मकथाएं हमने स्कूल के जमाने में लिखी होगी, पर कभी आपने सुनी है एक गधे की आत्मकथा? तो हाँ, आज हम एक पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं और उसी पुस्तक का नाम है एक गधे की आत्मकथा। किताब जिन्होंने लिखी है उनका नाम है कृष्ण चंद्र जी। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में लिखा है, इसके पढ़ने से बहुतों का भला होगा। महानुभव, मैं न तो कोई साधु संन्यासी हूँ, न कोई महात्मा धर्मात्मा, न श्री 108 स्वामी गहम गहमानंद का चेला हूँ, न जड़ी बूटियों वाला सूफी गुरमुख सी मजेला हूँ, न मैं वैद्य हूँ, न डॉक्टर, न कोई फिल्म स्टार हूँ, न राजनीतिज्ञ। मैं तो केवल एक गधा हूँ जिसे बचपन के दुष्कर्मों के कारण समाचार पत्र पढ़ने का घातक रोग लग गया था। होते होते यह रोग यहाँ तक बढ़ गया कि मैंने ईंटें धोने का काम छोड़कर केवल समाचार पत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। उन दिनों मेरा मालिक दब्बू कुंभार था, जो बाराबंकी में रहता था, जहाँ के गधे बहुत प्रसिद्ध है, और सैयद करामत अली साहब बार इटला की कोठी पर ईंटें धोने का काम करता था। सैयद करामत अली साहब लखनऊ के एक माने हुए बैरिस्टर थे और अपने पैतृक नगर बाराबंकी में एक आलीशान कोठी स्वयं अपनी निगरानी में बनवा रहे थे। सैयद साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था,

इसीलिए अपनी कोठी का जो भाग उन्होंने सबसे पहले बनवाया वह उनकी लाइब्रेरी का हाल तथा रीडिंग रूम था, जिसमें वह प्रातःकाल आकर बैठ जाती। वह 12 बरामदे में कुर्सी डालकर समाचार पत्र पढ़ती और ईंटें ढोने वालों की निगरानी भी करती। उन्हीं दिनों मुझे समाचार पत्र पढ़ने का चस्का पड़ा। होता अधिकतर यूं था कि इधर मैंने एक उठती हुई दीवार के नीचे ईंटें फेंकी, उधर भागता हुआ रीडिंग रूम की ओर चला गया। बैरिस्टर साहब समाचार पत्र पढ़ने में इतने लीन होते कि उन्हें मेरे आने की खबर तक न होती और मैं उनके पीछे खड़ा होकर समाचार पत्र का अध्ययन शुरू कर देता। बढ़ते बढ़ते ये शौक यहाँ तक बढ़ा कि बहुधा मैं बैरिस्टर साहब से पहले ही समाचार पत्र पढ़ने पहुंच जाता। बल्कि प्रायः ऐसा भी हुआ कि समाचार पत्र का पहला पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ और वह सिनेमा के विज्ञापनों वाले पन्ने मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं ना जाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। मैं कह रहा हूँ ओ, ईडन, आइजनहावर, बुलगानीन फिर मुलाकात करेंगे और वह कह रहे हैं आहा, हजरतगंज में दिलीप कुमार और

मम्मी की नई फिल्म आ रही है। मैं कह रहा हूं चच। सिकंदरिया की हवाई दुर्घटना में 12 मुसाफिर मर गए और वह कह रहे हैं बाप रे बाप, सोने का भाव फिर बढ़ गया है। बस इसी प्रकार हमारा यह सिलसिला चलता रहता, यहां तक कि मेरा मालिक ईंटें गिनकर और मिस्त्री के हवाले करके वापस आ जाता और मेरी पीठ पर जोर से एक कोड़ा मारकर मुझे ईंटें धोने के लिए ले जाता। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे कुछ न कहते। दूसरे फेरे में जब मैं वापस आता तो वह स्वयं समाचार पत्र का अगला पन्ना उठाकर मुझे दे देते, और यदि मैं पूरा पढ़ चुका होता तो भीतर लाइब्रेरी से कोई पुस्तक निकाल लाते और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते। यह जो मैं पढ़ना और बोलना सीख गया हूँ तो इसे सैयद साहब का ही चमत्कार समझिए या उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि सैयद साहब को समाचार पत्र पढ़ते हुए खबरों पर बहस करने और पुस्तकों को ऊंचे स्वर में पढ़ने तथा पढ़ते हुए उन पर टिप्पणी करने की बुरी आदत थी। यहाँ जिन स्थान पर वह कोठी बनवा रहे थे उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिससे वह ऐसी बहस कर सके। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, बस मैं एक गधा उन्हें मिला। परंतु इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, वास्तव में वह केवल बातचीत करना चाहते थे, किसी से अपने मन की बातें कहना चाहते थे। गधे की बजाय एक खरगोश भी उनकी संगति में रहता तो महापंडित बन जाता। सैयद साहब मेरे प्रति बड़ा स्नेह प्रकट करते थे और प्रायः कहा करते थे, अफसोस तुम गधे हो, अगर आदमी के बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। सैयद साहब की कोई संतान न थी। खैर, करनी भगवान की यह हुई कि एक दिन सैयद करामत अली शाह की कोठी तैयार हो गई और मेरे मालिक को और मुझे भी वहां के काम से छुट्टी मिल गई। फिर उसी रात धब्बू कुम्हार ने ताड़ी पीकर मुझे डंडे से खूब पीटा और घर के बाहर निकाल दिया और खाने के लिए घास भी न दी। मेरा दोष यह बताया कि मैं ईंटे कम ढोता था और समाचार पत्र अधिक पढ़ता था, और कहा मुझे ईंटे धोने वाला गधा चाहिए, समाचार पत्र पढ़ने वाला गधा नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंदर। कहीं मत जाइएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। रात भर भूखा प्यासा

मैं धब्बू कुम्हार के घर के बाहर शीत में ठुठुरता रहा। मैंने निश्चय कर लिया कि एक दिन निकलते ही सैयद करामत अली साह की कोठी पर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ईंटें धोने पर नहीं तो पुस्तकें ढोने पर ही मुझे नौकर रख लीजिए। शेक्सपियर से लेकर बेढम मूजी तक मैंने प्रत्येक लेखक की पुस्तकें पढ़ी है और जो कुछ मैंने उन लेखकों के संबंध में जानता हूँ वह कोई दूसरा गधा नहीं जान सकता। मुझे पूरी आशा थी कि सैयद साहब तुरंत मुझे रख लेंगे, लेकिन भाग्य की बात देखिए कि जब मैं सैयद साहब की कोठी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि रातों रात कोठी पर फसादियों ने हमला कर दिया। सैयद करामत अली साह को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। फसादियों में लाहौर के गंडासी फल विक्रेता भी थे जिनके लाहौरी दरवाजे के बाहर फलों की बहुत बड़ी दुकान और मॉडल टाउन में एक आलीशान कोठी थी। इस हिसाब से एक आलीशान कोठी उन्हें यहाँ भी मिलनी चाहिए थी। सौ भगवान की कृपा से उन्हें सैयद करामत अली साह की नई बनाई कोठी मिल गई। जब मैं वहां पहुंचा तो गंडासी लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकें एक एक करके बाहर फेंक रहे थे और लाइब्रेरी को फलों से भर रहे थे। ये शेक्सपियर का सेट गया और तरबूजों का टोकरा भीतर आया, ये गालिब के दीवान बाहर फेंके गए और मलिहाबाद के आम भीतर रखे गए, ये खलील जिब्रान गए और खरबूजे आए। थोड़े समय के बाद सब पुस्तकें बाहर थी और सब फल भीतर। अफलातून के स्थान पर आलू बुखारे, सुकरात के स्थान पर सीताफल, जोस के स्थान पर जामुन, मोमिन के स्थान पर मौसम्बी, सैली के स्थान पर सहतूत, किट्स के स्थान पर ककड़िया, सुकरात के स्थान पर बादाम, कृष्णचंद्र के स्थान पर केले और लहमत के स्थान पर लीमू भरे हुए थे। पुस्तकों की यह दुर्गत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें एक एक करके उठाकर अपनी पीठ पर लादने लगा। इतने में गंडासी अपनी फलों की लाइब्रेरी से बाहर निकल आए और एक नौकर से कहने लगे, इस गधे की पीठ पर सारी पुस्तकें लाद दो और एक फेरे में न जाए तो 8-10 फेरे करके ये सब पुस्तकें एक लारी में भर कर लखनऊ ले आओ और नखास में बेच डालो। अतएव गंडासी के नौकर ने ऐसा ही किया। मैं दिन भर पुस्तकें लाद लाद कर लारी तक पहुंचाता रहा और जब शाम हो गई तो अंतिम पुस्तक की लारी भी पहुंच गई। तब कहीं गंडासी के नौकर ने मुझे छोड़ा, मेरी पीठ पर उसने जोर का एक कोड़ा जमाया और मुझे लात मार कर वहां से भगा दिया। मैंने सोचा जिस शहर में पुस्तकों तथा महापंडितों का ऐसा अनादर होता हो वहां रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने वहां से प्रस्थान का संकल्प लिया। अपने शहर के दरो दीवार पर हसरत भरी निगाह डाली, घास के 2-4 तिनके तोड़कर मुंह में रखे और दिल्ली की ओर चल खड़ा हुआ। सोचा दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी भी है और कला विद्या राज्यों का राजनीति का केंद्र भी, वह किसी न किसी प्रकार गुजारा हो जाएगा। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। कहीं मत जाइएगा, यही जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर विद आरजे अंजलि।

हेलो हाय नमस्कार वेलकम अगेन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति की जुबान पर था और एक तरह से मैं भी इस नारे से प्रभावित होकर दिल्ली जा रहा था, परंतु यह मालूम न था कि रास्ते में क्या विपत्ति आएगी। रास्ते में एक स्थान पर मैंने देखा एक ढही सरहई दाढ़ी रखे हुए एक छोटी सी गठरी बगल में दबाए एक छोटे से गांव से भागकर सड़क पर आ रहा था। मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तेज तेज कदमों से चलने लगा ताकि उस गांव के फसादी उसका पीछा न कर सके। और हुआ भी यही, मैं बहुत आगे निकल गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे कारण एक निर्दोष की जान बच गई। इतने में क्या देखता हूँ कि बहुत से फसादी रास्ता रोके खड़े थे। एक फसादी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखो इस बदमाश को, न जाने किस बिचारे का गधा चुराए ले जा रहा है। रई ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा मगर किसी ने एक न सुनी। उसे फसादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुझे एक फसादी ने बांध लिया और अपने घर की ओर चला। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ गांव पड़ते थे। यहाँ पर कुछ एक दूसरी ओर से फसादी आगे बढ़े। उस बिचारे ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसका सफाया हो गया और मैं एक मौलवी साहब के हिस्से में आया। रास्ते में मैंने मौलवी साहब के आगे बहुत अनुनय विनय की, मैं हजरत मुझे छोड़ दीजिए। मौलवी, यह कैसे हो सकता है, तुम माले गनीमत हो। मैं, हुजूर मैं माले गनीमत नहीं हूँ, गनीमत यह है कि मैं एक गधा हूँ, वरना अब तक मारा गया होता। मौलवी ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान, फिर हम फैसला करेंगे। मैं ठीक ठीक तो कह रहा हूँ, न मैं मुसलमान हूँ न मैं हिंदू हूँ, मैं तो गधा हूँ। मौलवी ने कहा, तू बहुत बदमाश मालूम होता है, हम घर जाकर तुझे ठीक करेंगे। मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। मैंने मौका गनीमत जाना और रस्सी तोड़कर वहां से निकल भागा। ऐसा भागा कि मीलों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैंने यह निश्चय कर लिया था, इन संकीर्ण हृदय व्यक्तियों के झगड़े से एक गधे का क्या संबंध। अब मैं किसी की भी सहायता नहीं करूंगा, अतएव अब मैं दिन भर किसी वृक्ष की घनी छाया में पड़ा रहता या किसी जंगल अथवा मैदान में घास चरता रहता और रात होने पर अपनी यात्रा शुरू कर देता। इसी प्रकार चलते चलते बड़ी मुश्किल से कहीं 6-7 महीनों के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के भूगोल का वर्णन संक्षिप्त रूप से करता हूँ ताकि दिल्ली आने वाले यात्री मेरी जानकारी से पर्याप्त लाभ उठा सके और धोखा न खाए। इसके पूर्व में शरणार्थी, पश्चिम में शरणार्थी, दक्षिण में शरणार्थी और उत्तर में शरणार्थी बसते हैं। बीच में भारत की राजधानी है और इसमें स्थान स्थान पर सिनेमा के विभिन्न औषधियों और शक्तिवर्धक गोलियों के

विज्ञापन लगे हुए हैं, जिससे यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति की महानता का अनुभव होता है। एक बार मैं चांदनी चौक से गुजर रहा था कि मैंने एक सुंदर युवती को देखा जो तांगे में बैठी पायदान पर पांव रखे अपनी सुंदरता के नशे में डूबी चली जा रही थी और पायदान पर विज्ञापन चिपका हुआ था। मैं इस दृश्य के तीखे व्यंग से प्रभावित हुए बिना न रह सका और बीच चांदनी चौक में खड़ा होकर काकाहा लगाने लगा। लोग राह चलते चलते रुक गए और एक गधे को बीच सड़क में काकाहा लगाते देखकर हंसने लगे। वे बेचारे मेरी दुष्ट आवाज पर हंस रहे थे और मैं उनकी दुष्ट सभ्यता पर काकाहे लगा रहा था। इतने में एक पुलिस के संतरे ने मुझे डंडा मारकर टाउन हॉल की ओर धकेल दिया। इन लोगों को मालूम नहीं कि कभी कभी गधे भी इंसानों पर हंस सकते हैं। दिल्ली में आने वालों को यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में प्रवेश करने से बहुत से दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, तुर्कमान दरवाजा इत्यादि, परंतु आप दिल्ली में इनमें से किसी दरवाजे के रास्ते भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि इस दरवाजों के भीतर प्राय गाय, भैंसे, बैल बैठे रहते हैं या फिर पुलिस वाले चारपाइयां बिछाए ऊँगते रहते हैं। हाँ, इन दरवाजों के दाएं बाएं बहुत सी सड़कें बनी हुई है जिन पर चलकर आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली में भी एक इंडिया गेट बनाया है, लेकिन इस गेट से भी गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजे के इर्द गिर्द घूम फिर कर जाना पड़ता है। संभव है दिल्ली के घरों में भी थोड़े दिनों में ऐसे दरवाजे लग जाए, फिर लोग खिड़कियों से कूद कर घरों में प्रवेश किया करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ, आरजे अंजलि के साथ।

दिल्ली में नई दिल्ली है, और नई दिल्ली में कनॉट प्लेस है। कनॉट प्लेस बड़ी सुंदर जगह है। शाम के समय मैंने देखा कि लोग लोहे के गधों पर सवार होकर इसकी गोल सड़कों पर घूम रहे हैं। यह लोहे का गधा हमसे तेज भाग सकता है, परंतु हमारी तरह आवाज नहीं निकाल सकता। यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को भेड़ की खाल के बालों के कपड़े पहनते हुए देखा है। स्त्री अपने मुंह और नाखून रंगती है और अपने बालों को इस प्रकार ऊंचा करके बांधती है कि दूर से वो बिल्कुल गधे के कान मालूम होते हैं। अर्थात इन लोगों को गधे बनने का कितना शौक है, यह आज मालूम हुआ। कन्नौट प्लेस से टहलता हुआ मैं इंडिया गेट चला गया। यही चारों ओर बड़ी सुंदर घास बिछी थी और उसकी धूप तो अत्यंत स्वादिष्ट थी। मैं 2-3 दिन से तो भूखा था ही, बड़े मजे से मुंह मार मार कर चलने लगा। इतने में एक जोर का डंडा मेरी पीठ पर पड़ा। मैंने घबरा कर देखा, एक पुलिस का सिपाही क्रोध भरे स्वर में कह रहा था, यह कमबख्त गधा यहाँ कैसे घुसा? मैंने पलट कर कहा, क्यों भाई, क्या गधों को नई दिल्ली में आने की मनाही है? मुझे बोलता देख कर वह सटपटा गया। शायद उसने आज तक किसी गधे को बोलते नहीं सुना था। फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका आश्चर्य कुछ कम हुआ तो मुझे रस्सी से खींच कर थाने ले गया। थाने में ले जाकर उसने मुझे कांस्टेबल के सामने खड़ा कर दिया। हेड कांस्टेबल ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देख कर कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो रामसी? रामसी ने कहा, हुजूर यह एक गधा है। गधा तो है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर यह इंडिया गेट पर घास चल रहा था। अरे घास चल रहा था तो क्या हुआ, तुम्हारी बुद्धि तो कहीं घास चरने नहीं चली गई, इसे यहाँ क्यों लाए हो? ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर देते, इस बेजबान जानवर को थाने में लाने की क्या जरूरत थी? राम सिंह ने रुकते रुकते मेरी और विजय दृष्टि से देखकर कहा, हुजूर यह बेजबान नहीं है, यह बोलता है। अब की हेड कांस्टेबल बहुत हैरान हुआ, लेकिन पहले तो उसे विश्वास न आया, फिर बोला, रामसी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं नहीं यह बिल्कुल ठीक कहता है हेड कांस्टेबल साहेब, मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आज अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

हेड कांस्टेबल अपनी सीट से उछला, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वास्तव में उसका आश्चर्य अनुचित भी नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली में ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो इंसान होकर गधों की तरह बातें करते हो, लेकिन एक ऐसा गधा जो गधा होकर इंसानों की तरह बातें करे, हेड कांस्टेबल ने आज तक देखा या सुना नहीं था। इसलिए बेचारा चकरा गया। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। आखिर सोच सोच कर उसने रोजनामचा खोला और रपट दर्ज करने लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम? गधा। बाप का नाम? गधा। दादा का नाम? गधा। यह क्या बकवास है, हेड कांस्टेबल ने क्रोध पूर्वक कहा। सबका एक ही नाम है, यह कैसे हो सकता है? अब मुझे देखो, मेरा नाम ज्योति सिंह है, मेरे बाप का नाम प्यारे लाल था, मेरे दादा का नाम जीवन दास था। हमारे यहाँ नाम बदलते रहते हैं। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। ज्योति से मुझे संदेह की नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ कि हमारे यहाँ नाम नहीं बदलते। जो बाप का नाम होता है वही बेटे का और वही पोते का। इससे क्या लाभ? ज्योतिषी ने पूछा। इससे वंशावली मिलाने में सुविधा होती है। उदाहरण स्वरूप, क्या आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं? मैंने ज्योतिषी से पूछा। नहीं, ज्योतिषी ने अफसोस प्रकट किया, मगर मैं बता सकता हूँ। आपके यहाँ वह आदमी बड़ा खानदानी समझा जाता है जो आज के 400, 600, 800, 1600 साल पहले अपने पुरखे का नाम बता सके। देखिए, मैं आपको आज से 16 लाख साल पहले के अपने पुरखे का नाम बता सकता हूँ, श्री गधा। बोलिए, फिर क्या हम गधे आपसे बेहतर खानदान के हुए या नहीं? ज्योतिषी ने बड़े ध्यान से मेरी ओर देखा। उसका संदेह और बढ़ गया। उसे धीमे स्वर में रामसी के कान में कानाफूसी करते हुए कहा, मुझे यह शख्स बड़ा खतरनाक मालूम होता है। हो ना हो, यह कोई विदेशी जासूस है जो गधे के लिबास में नई दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। रामसी ने कहा, हुजूर, मैं तो समझता हूँ इसकी खाल उतरवा कर देखना चाहिए, भीतर से खुफिया जासूस निकल आएगा, फिर हम इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। ज्योतिषी ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए सब इंस्पेक्टर चानन राम की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। चलो इसे उनके सामने ले चले। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं जुड़े रहिए मेरे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: कान में भी कुछ भनक पड़ गई थी, लेकिन मैं कान लपेटे चुप रहा और उन दोनों के साथ भीतर के कमरे में सब इंस्पेक्टर चाननराम के सामने चला। चाननराम की मूछें बिच्छू के डंग की तरह खड़ी थी और उसका सुर्ख चेहरा हर समय तमतमाया रहता था। चाननराम को आज तक किसी ने हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, इसलिए लोग उसे एक योग्य पुलिस अफसर समझते थे। चाननराम ने उसकी पूरी बात सुनकर मेरी ओर घूर कर देखा और कहा, तो तुम पाकिस्तानी के जासूस हो। मैं चुप रहा। चाननराम ने जोर से मेज में मुक्का मारकर कहा, समझ गया, तुम रूस के एजेंट हो। मैं फिर चुप रहा। चाननराम ने दांत पीसते हुए कहा, कमबख्त, बदमाश, कम्युनिस्ट, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वरना जल्दी बताओ तुम कौन हो। यह कहकर चाननराम मुझे मुक्को लातों और ठोकरों से मारने लगा। मारते मारते जब वह बिल्कुल बेदम हो गया तो मैंने जोर से एक दर्द भरी आवाज की। आवाज करते ही वह रुक गया और पहले मेरी ओर आश्चर्य से देखकर और फिर अत्यंत क्रोध से ज्योति सी और राम सी की ओर देखकर बोला,
1: अरे यह तो बिल्कुल गधा है, और तुम कहते हो यह कोई विदेशी जासूस है। तुम मुझसे मजाक करते हो, मैं अभी तुमको डिसमिस करता हूँ।
0: राम सी और ज्योति सी दोनों भय से थरथर कांपने लगे। हाथ जोड़कर बोली,
2: हुजूर, अभी यह बाहर के कमरे में बोल रहा था, साफ साफ बोल रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह।
1: तुमने सपना देखा होगा या काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। जाओ, इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ और कांजी हाउस में बंद कर दो। अगर 3-4 दिन में इसका मालिक न आए तो नीलाम कर देना।
0: मैं खुशी खुशी बाहर आया। मेरी चाल काम कर गई। अगर मैं भूलता तो वे लोग निश्चय ही मेरी खाल उधेड़ कर देखते कि भीतर कौन है। इसके बाद 3-4 दिन तो क्या, एक हफ्ते तक कोई मालिक न आया, फिर मुझे नीलाम कर दिया। अब कि मुझे रामू धोबी ने खरीद लिया, जो यमुना पार कृष्ण नगर में रहता था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तो जुड़े

0: I'm sorry.
1: अल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं बेटा, उनको भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना। छोटा तो देखो कितना छोटा है,

खुशियाँ ढेर सारी। दोस्ती को जिसने नाम दिया सच्चा, जहाँ मुझे एक लगाव मिला सच्चा। कुछ भी न मैंने तुमसे मांगा, न तुमने मुझसे, फिर भी एक वादा मिला सच्चा। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं जो आपसे हो। हमें अपनी जिंदगी में एक छोटी सी जगह दे दिया और हमारे दिल में आपने ले। दोस्त आप चाहे हमें याद रखे न रखे, पर आपकी यादें हमें हर पल आती रहती है। आप ही तो है जिनसे हम कुछ भी कह सकते थे। आप ही तो है जिनसे हमारा दिल जुड़ा हुआ है। ऐसी दोस्ती को सलाम करते हैं। कभी भी किसी भी वक्त याद कीजिएगा, आपका दोस्त आपके लिए हर वक्त हाजिर हो जाएगा। आप हमें चाहे भूल जाए, हम आपको न भूल पाएंगे, क्योंकि आप हमारे दिल में जो बसते हैं। विश यू अ हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। दोस्त तुम जियो हजारों साल।